0: निष्पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक
1: ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
1: नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैला लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रकाश
1: जैसे तरु पराकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए
1: नानक जिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिन्न
0: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पारोपकारु महा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
1: ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दे आखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञान

0: अंतर उतार
1: बस प्रेत मुगस पाथर को उतार
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत के तैना पाइये धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास दसंदर पाए तिन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दरगह परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: दास को सब सोजी पर
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक रामदास
0: सब की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुकत सो कहावे
0: तैसा हर तैसा उस सोग
1: अनंत है नाहीं वियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी बेखाटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वरताए साई जुगत
1: नानक पुरख ये जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
1: कर राखे तैसा तिन्नाओ
0: आपे करन करावन जोग
1: आवे सोई फन होग
0: पसरे हो आप होए अनत तरंग
1: लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दे तैसा

0: कोट बन ब्रह्मे उदासी,
1: कई कोट वेद के स्रोते,
0: कई कोट पीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धार है,
0: कई कोट कप का विचार है,
1: कई कोट नवतन नाम त्याव है,
0: करते का अंत न पाव है,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध ज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट अपेग आत्म निकोर,
1: कई कोट पर दर्ब को हिर
0: है, कई कोट पर दुख न कर है,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश प्रमा है,
1: जित जित लाभ तित तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बह संतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट ससियर सूर नखेत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत तारे,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र,
1: कई कोट किए रतन समुंदर,
0: कई कोट नाना प्रकार जंतर,
1: कई कोट किए चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वरन थीवे,
1: कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सब ते नीरे सब हूते दूर,
0: नानक आप अलपत रहे अपरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक सुर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म जीव मर है,
0: कई कोट बहुत जोनी फिर है,
1: कई कोट बैठत ही खाहे,
0: कई कोट काले तक पाहे,
1: कई कोट किए तनवंत,
0: कई कोट माया में चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब किस प्रभु के हाथ है,
1: कई कोट भय बैरागी,
0: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभु को खोजनते,
0: मैं पार ब्रह्म लंत,
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
0: को मिलियो प्रभु विनाश,
1: कई कोट मांगे सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जुगत की नो विस्तार,
1: कई बार पसरे उपासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार।

0: जन अपना प्रभु पछाता
1: सोजन सर्व तो का दाता
0: तिसकी शरण सर्व सुख पावे
1: दस सब पाप मिटावे
0: अवर स्यान बशगली शाड़।

0: अष्टपदी जब अकाल एह कछ ना दृष्टेता
1: पुन तब कहते होता
0: जब धारी आपन सुन समाद
1: कमात
0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: हर्क सो को किसे व्यापत
0: जब आपने

0: ठाकुर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपने आसन
0: जन्म मरण कहो कहां बिनासन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: जमकी त्रास कहो किस होए
1: जब अबगत अगोचर प्रवेका
0: चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।

0: जय अचल अछेद अपे समाया
1: किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: गुण का नाही परवेश
0: जय एक है एक एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय आपने आप आपतियारा
1: कौन कथ है कौन सुनने हारा
0: बहु ब्यंथ ऊचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर पांचे आकार
1: मैं कीनो विस्तार
0: पाप पुन तय पई कहावत
1: को स्वर्ग बंछावत।

0: आप कथाय आप सुन नहार,
1: आपै एक आप विस्तार,
0: जहाँ तिस बावे दा सिष्ट उपाए,
1: अपने पाणे लय समाए,
0: तुम ते पिन नहीं किज होए,
1: अपन सूत सब जगत परोए,
0: जहाँ को प्रभु जीव आप बुझाए,
1: सच नाम सोई जन पाए,
0: सो समदासी तत का बेता,
1: नानक सगल सिसका जेता,
0: जी यंत्र सब तां कै हाथ,
1: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
0: जिस राख्या तिस कोई न मारे,
1: सो मुआ जिस मनो बिसारे,
0: तिस ताजावर

0: काए स्वाओ
1: आठ पहर प्रपेखो नेरा
0: निरे अज्ञान विसे अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय वसावो
0: मनीषे नानक फल पावो
1: हाल दपाल देव लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: जिस मन बसे तिस आज परिखिया।

0: कवन निकट कवन कही है दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतरगत जिस आप जनाए
1: नानक जीजन आप बजाए
0: सर्व पूत आप वरतारा
1: सर्व नैन आपेखनहारा
0: सगल समग्री जाका तना
1: आपन जसा भी सुना
0: आवन जानक खेल।

0: जो जाने तिस सदा सुख होए
1: मलाए ले प्रभ सोए
0: ओह तनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिसे हृदय भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस पर सा सब

0: गोविंद अमृत रस पियो,
1: चित चितवो नारायण एक,
0: रूप जाके रंग अनेक,
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल,
0: जन पूरन कृपाल,
1: सिमर सिमर नाम बारंबार,
0: नानक जी का यह आधार,
1: उत्तम श्लोक साध के

0: नानक निभि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रकट सब लोए
1: सब दे उच पाए अस्थान
0: न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: ज्ञान सर्व तै सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रव ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास
0: मद सगल ते उदास
1: सुंदर चतर तत का बेता
0: समदर्शी एक

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौन दयावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रिया।

पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दी दान

तन है गुरु हर गोविंद जी तन है तन है तन है तन है गुरु हर राय जी तन है तन है तन है तन है गुरु हर कृष्ण।

0: निक माया रंग तिक्ष्ण बुझावे
1: हर का नाम जपत कावे
0: जय मार्ग ए जात केला
1: तै हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइए
1: नानक गुरुलख परगत पाइए
0: छूटस नहीं कोट लखबाई
1: नाम जपत ते पार पराई
0: अगिन बिगिन ते जाए आए संगारे
1: हर का नाम तत्काल धारे
0: अनिक जोन जन्मे मर जा।

0: हरका नाम जन को मुकट जुगत
1: हरके नाम जन को त्रिपत भुगत
0: हरका नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जगत का परे न पंग
0: हरका नाम जन की वडियाई
1: हरके नाम

0: जप निर्मल कर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
2: उत्तम क्रिया
1: सासांग दुर्मत मल हिरिया, हर का नाम जप जी सदा,
2: सगल वाणी में अमृत वाणी,
1: हर को

0: मेघ बिना जो खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरते सब काम,
0: जो के पन के रात दाम।
1: तांते जन जे कट वस्यो हर नाम,
0: नानक ताके बल बल जाओ।
1: नैत अवर कछ अवर कम।

0: दी।
1: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे,
0: तिष्ठा कर को रख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे,
0: तिसे को सिमरत परम गत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख अंदर,
0: तिसे ध्याए सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद गृह स्वंग सुख बसना,
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याये त्या मन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
0: तिसे त्या कदे अवर लुभावे।
1: जय प्रसाद सुख शेष होई जे,
0: मन आठ पैर ताका जस गय
1: विजय। जय प्रसाद तुझ सबको माने,
0: मुक्ता को जस रस सब खाने।
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: जब दरगह मान पावे,
0: नानक पासे ती कर जावे।
1: जय प्रसाद आरोग कंचन तेही,
0: लिवला हो तुझ राम सुस लेही।
1: जय प्रसाद तेरा उला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
0: मन सरनी पर ठाकर प्राप्त आके।
1: प्रसाद तुझ को ना पहुँचे,
0: मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊंचे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह,
0: नानक ताकी भगत करे।
1: जय प्रसाद आपको खन पहरीजे,
0: मन ते सिमरत को आलस कीजे।
1: जय प्रसाद असो हस्ता सवारी,
0: मन तिस प्रभु को कबूना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना।
1: तेरी मन बंत बनाई,
0: उठत बैठ सा तिसे त्याई।
1: से त्याए जो एक अलखे,
0: इया मुहा नानक तेरी।
1: जय प्रसाद करह पुन बन बहुदान,
0: मन हाट पैर का किसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी,
0: जिस प्रभु को साथ साथ चितारी।
1: जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप,
0: सो प्रभु सिमर सदा अनुरूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है,
0: गुरु प्रसाद नानक जस कहे।
1: जय प्रसाद सुने कर नाद,
0: जय प्रसाद देखे विस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
0: जय प्रसाद सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
0: जय प्रसाद पूर्ण फले।
1: जय प्रसाद परम गत पाव है,
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
1: ऐसा प्रग त्याग अवर कत लाग हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तुम संप्रगट संसार,
0: इस प्रभु को मूल नमनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप,
0: रे मन मूर्त तू ताको जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: जिसे जान मन सदा हजूरे।
1: जय प्रसाद तू पावे साच,
0: रे मन मेरे तू तासे राज।
1: सबकी गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: जपाए जपे सो नाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: कृपा ते होए प्रगास,
0: प्रभु दयाते कमल विश्वास।
1: सुप्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभु दयाते मत उत्तम होए।
1: सर्व धन प्रभु तेरी माया।

0: प्रभु बनियाई।
1: साध के संग
0: सदा सुख पावे,
1: संग बसते गोचर लहे,
0: साधु के संग जल सहे,
1: साध के संग बसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग मेहर पहुँचे,
1: साध के संग दिले सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध के संग सब कुल उधारे,
0: साध संग साजन मित कुटुंब नस्तारे,
1: साधु के संग शोधन पावे,
0: जिस दन ते सब को बरसावे,
1: साध संग तरंग गाय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा,
1: साधु के संग पाप पलाय,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध के संग सर्व स्थान गम,
0: नानक साध के संग सफल जन्म,
1: साध के संग नहीं कछु काल,
0: दर्शन भेड़त होत निहाल,
1: साध के संग कलुख धरे,
0: साध के संग नरक पर।

0: साधु के संग बैठा
1: संग वे आज्ञाकारी
0: सत्संगत पई हमारी
1: सत्संग मिटे सब रोग
0: नानक साध।

राष्ट्रपति जैसे जल में कमल लेप जैसे सूर सर्व को सोख जैसे राज रान को लागे तुल भगवान जोग सदा को खोते को चंदन लेप नानक जो पावक का सहज स्वभाव जैसे मैल न जल ले जला जैसे तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान मन अपने है सत्य नीचा नानक जिन प्रलाप करे आत्म रस ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पिया ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी सफल फला नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के बसे ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञानी के ना परवार ब्रह्म ज्ञानी अम्बो त्याग ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की जत ब्रह्म ज्ञानी जाने नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष बताता ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार

0: दे बसावे,
1: नानक के सब गोती भगवंत को पावे।
0: सो पंडित जो मन पर बोधे,
1: राम नाम आत्म में सोधे,
0: राम नाम सार रस पीवे,
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे।
0: हर की कथा हृदय बसावे,
1: सो पंडित फिर जो न आवे,
0: वेद प्राण सिमरत पूजे मूल,
1: सुख में जाने अस्तूल,
0: जो वर्ना को दे उपदेश,
1: नानक उस

0: तैसी बेखटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा रजान
1: जो वरताए साई जुक्त
0: नानक को पुरख ये जीवन मुक्त
1: पाप रम के सगले ठाओ
0: जे जित का राखे तैसा तिन नाओ
1: आपे करन करावन जोग
0: रब आवे सोई फन होग
1: बस आप है न तरंग
0: लखे न जाए पाप।

0: हुक्मे विजय हुक्म समावे
1: उधारे
0: आप करे अपन बिचारे
2: मनुख ते किया होए आवे
3: जो तिस पावे सोई करे
1: कर कृपा जिस अपनी भगत दे खिन में नीच कीट कीट को राज
3: बार ब्रह्म गरीब निवाज
1: जाका दृष्ट कछु ना आवे
3: जिस तत्काल दे दिस परटावे
1: जाको अपनी करे बख्शीश
3: ताका लेखा न गने जगदीश
1: जीव पिंड सब तिसकी रास
3: कट कट पूर्ण ब्रह्म परगास
1: अपनी बढ़त आप बना

0: मोहत से पावे सोई फुनतियो,
1: कबू ऊंच नीच में बसे,
0: कबू सो घर रंग रसे,
1: कबू निंद चिंद व्यवहार,
0: कबू उब आकाश प्याल,
1: कबू मेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आबिलार,
1: कबू निरत करे बहुपात,
0: कबू सोए रहे दिन रात,
1: कबू महा क्रोध विकराल,
0: कबू सरकी हो तरवाल,
1: कबू हुए सबे बड़ राजा,
0: कबू भिखारी नीच का साजा,
1: कबू अब किरत में ही आवे,
0: कबू पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे तिम ही रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबू होए पंडित करे बख्यान,
0: कबू मोन तारी लावे ध्यान,
1: कबू तट तीरथ स्नान,
0: कबू से सतक मुख ज्ञान,
1: कबू कीट पतंग हस पतंग होए जिया,
0: अनुग्रह पर में परमिया,
1: नाना रूप जो सांगी दिखावे,
0: जो कर पावे तेवे न चावे,
1: ज्योतिष पावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कबू सास संगत एह पावे,
0: उस स्थान ते बोह न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास,
0: उस स्थान का नहीं बनास,
1: मंतन नाम तेरंग एक,
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
1: जो जल में जल आए खटाना,
0: ज्योति।

0: मत होए मलीन,
1: संत के दुख शोभा देहिन,
0: संत के हते को रखे ना कोए,
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संसंग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जियो लवे,
0: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
1: संत के दुखन तेर गुरु जोन कर पाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले।

0: निंदक मा अतताई
1: संत का निंदक न टेकन न पाई
0: संत का निंदक मा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राय तहीन
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग।

0: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर तेथो था,
1: जो सांस बिना मृत्यु की लोथा,
0: संत के दुखी की

0: साध के धूर करो इस्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: सार सेवा बड़ पाकी पाइए
1: सत्संग हर कीर्तन गाइए
0: अनेक बिगंते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: उठ गई संता दरियाया
1: सर सुख नानक ते पाया
0: निर्दय को जीवालन हार
1: भूखे को देवता आधार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे
1: गुण लिखे करण पाए
0: सब कुछ तिसका यह करने जोग
1: इस बिन दूसर हुआ न होग
0: जप जन सदा सदा।

0: बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राख
1: ताकि गत में तो कोई न लाख
0: के सेवक को न पहुँचा
1: प्रभु के सेवक उचते उचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दिस प्रगटाया
0: की कीरी महकल राख
1: पसम करेला।

0: तेरे प्राणी
1: जप नानक प्रभु अलख विडाने
0: बारंबार बार प्रभु जपिए
1: प्रिय अमृत अमृत तत्र प्रिय
0: अमृतन जिन गुरुमुख पाया
1: तिसको जावन नहीं।

0: जाचक जन जाचे प्रभदान
1: कर कृपा देवो हर नाम
0: साजना की मांगो तूर
1: पार ब्रह्म शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो
1: सा प्रभु तुम्हें त्यावो
0: चरण कमल स्यों ला

0: जिन चाख्या से जन त्रिपताने
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने
0: सुपर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चौ साध के संग
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर मरगा दिल लाग
0: बड़ भागी जपिया प्रभ सोए
2: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
2: सतगुर दे निर्मल मत लई
0: जन को प्रभ होयो दयाल
2: सेवा की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकत जन पया इच्छ पुणे सरदा सब पूरी
1: रब रहा सतसंग हजूरी
0: जिसका साथ न लिया मिलाए
1: नानक भगती नाम समाए
0: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन ते राखे
1: गुर प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे
1: जन्म जन्म का टूटा गाडे
0: गुर पूरे तते है बुझाया
1: प्रभे अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो एहो काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो वरै नाम जपावो
0: भगत पाए तरिया संसार
1: बिन भगती तन होसी सार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम।

0: भगत जना के मन तन रंग
1: बिरला को उपावे संग
0: एक बस्त दीजे कर मया
1: गौर प्रसाद नानक जप लिया
0: की उपमा कही न जाए
1: नानक रेया सर्व समाए
0: प्रभक संत दीन दयाल
1: भगत बचल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
2: आदि
0: पुरख कारण करतार
2: भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सो होए पुनी
2: भगत पाए आवे मन हीत
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग बड़े आई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: बहु भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: भली सुकरनी शोभा तनवंत
1: हृदय बसे पूर्ण।

0: बली
1: जब आकारे कहना दे देता
0: पाप उन तब कहते होता
1: जब तारी अपन सुन समात
0: तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका बहन चेहर ना जापत
0: तब हर कसो को किसे व्यापत
1: जब अपन आप पाप ब्रह्म
0: तब वो कहा किस होवत परम
1: अपन खेल आप भरतीजा
0: नाने करने हार न दूजा
1: जब होवत कब पब केवल तनी
0: तब बाद मुक्त को किसको गनी
1: जब एक है हर अगम पार
0: तब नरक सुरक को कौन उतार
1: जब निर्गुण प्रभु सह सुपाए
0: तब शिव शक्त को कित ठाए
1: जब आप अपनी जो तर
0: तब कवन निडर कवन का तो डर
1: अपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकर अगम पार
1: अविनाशी सुख अपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन
1: पूर्ण करता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास को हो किस होए
1: जब अवगत गोचर प्रभु एका
0: तब चित्र गोबत किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप आप ही अचरजा
0: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
1: ये निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: तै बिन मैल को क्या तोता
1: ये निरंजन रंका निर्वाण जय सूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समाव कान करावन करने हार जर अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: सब कवन माए बाप मित्र सुत
1: जय सर्व कला आपे परवीन
0: वेदक देव कहा को चीन
1: जब अपन आप उतार
0: तो शगन अप शगन कहा बिचारे
1: अपन ऊंच अपन अपने
0: तय कौन ठाकर कौन कहिए चेहरा
1: बिस्मर बिस्म रहे बिस्माद
0: नानक अपनी गत जानो
1: जय अशल अछेद अभेद समाया आप को आपे आदेश जय एका एक एक भगवंता
0: कौन चिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पति यारा
0: ते कौन कथे कौन सुनने हारा
1: बेअंत ऊंचे ऊंचा
0: नानक आप सको आपे पहुंचा
1: जय आप रचो पर पंच कार
0: ते गुण में की नौ विस्तार
1: पंत पई कहावत
0: को नरे को स्वर्ग बछावत
1: जाल माया जंजा
0: हाँ मैं मो परम पार
1: सुख मान पमान
0: अनक पर कार किया उपख्यान
1: खेल आप कर देख
0: खेल सकोचे तो नानक एक
1: जय भगत अपगते आप
0: जय पसरे पसार संत प्रताप
1: पाप का पैतनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप कौतक करे अंध चो

0: पात
1: जो जो रचे सतिशे त्यात
0: पावे तिस लय मिलाए
1: भक्त करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: करन हार नानक एक जान्या
0: जन लागा हर एक कै नाए
2: तिस की आसना व्यर्थी जाए
0: सेवक को सेवा बनि आई
2: हुकम बूझ

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई।

अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ गूढ़ गहर गंभीर ऊंचा अगम अपारे साध संग जो तुम है मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनध भया पिखत ही नानक प्रताप

मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवह उदम। जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता। कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन भव करिया। ऊड़े ऊड़ आवै सै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल, सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई,

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिन्ना सो ऐसा हर त्याई मेरे जियाड़े ता सर्व सुख पावे है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पव जल तरना सो कहो टल गुर सेविय

दुख पावै, जमकाल सहै सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरन पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, भो सोभ खंड ब्रह्मंडा हे।

पूजिया तिन हर पूज करावा पूज वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिम सुख पावो
1: काल कलेश तन माय मिटावो
0: सिमरो जास संभरे कर
1: नाम जपत अगत अनेक
0: वेद प्राण सिम सुध आखर
1: इने राम नाम के आखर
0: किनका एक जी जी बसावे
1: ताकी महिमा गणी नावे
0: ताकी एक दर सुहारो
1: नानकुन संग मोहे उदारो
0: सुखमनि सुखमृत प्रभु नाम
1: जनागे मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कैसे मन गर्व न बसे
1: प्रभु कैसे मन दुख जब न सहे
0: प्रभु कैसे मन काल पर हरे
1: प्रभु कैसे मन दुश्मन डरे
0: प्रभु से मत कुछ बिगन न लागे प्रभु कैसे मन पौ न व्यापे
1: प्रभु कैसे मन दुख न संतापे
0: प्रभु कैसे मन साध कै संग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
1: प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभु कै सिमरन विनसे दूजा
0: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी
1: प्रभु कै सिमरन दरगह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होए सुफला
1: प्रभु कै सिमरन सफल फला
0: श्री सिमरै जिन आप सिमराए
1: नानक तागे लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा
1: प्रभु कै सिमरन उतरे ऊंचा
0: प्रभु कै सिमरन तिस न बूझे प्रभु
1: कै सिमरन सब कुछ सुझे
0: प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा
1: प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए प्रभु जी बस साध की रसना प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु का सिमर से जन परवान प्रभु का सिमर से बेमोताजे प्रभु का सिमर से सुखवासी सिमनते लागे जिनाब दयाला प्रभु का सिमर से परोपकारी प्रभु का सिमर से मुख सुहावे प्रभु का सिमर तिना तम जीता
1: प्रभु का सिमर
0: निर्मल रीता प्रभु का सिमर
1: तिन
0: आनंद कनेरे संत कृपा ते अंदिन जाग प्रभु का सिमर कारज पूरे प्रभु का सिमर हर गुण वाणी प्रभु का सिमर ने चलासन प्रभु का सिमर अनहद चुनकार सिमर से जिन जिनको प्रमया हर सिमन कर पर पगटाए हर सिमन पै सिद्ध जति जाते हर सिमन तारी सब तरना हर सिमन कियो सगला कारा हर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना पटकट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी
1: जय मात पिता सुत मीत न पाई
0: मनु अनंतर संसाई
1: जय महाप्यान दूत जम तले
0: केवल नाम संग तेरा चले
1: जय मुश्किल होवे अत पारी
0: हर को नाम जिन कन मै नोधारी
1: अनेक गुने चन करत नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक भाव सुख निरे
1: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोरी बंधन पर
0: हर का नाम जपत निस्तर है
1: माया रंग
0: हर का नाम जपत गावे
1: मार
0: के जात केला हर नाम
1: ऐसा नामन सदा ध्याये
0: नानक गुरमुख परम गत पाइये
1: कोट लग पाई
0: नाम जपत पार पराई हर का नाम तत्काल उदार है नाम जपत पावे विश्राम
1: ओ मैला मल कबू न तोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जपो मन रांग
0: नानक

0: जतन करे तो भी सरभंग
1: पिंगल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तो आप सुना
1: दार करुणा मैं दीन बेनती करे
0: नानक तुमरी कृपा करे
1: संत साई से आवे न चीज
0: जो वैराई दास प्रीत
1: भगे ग्रह पितर बसे
0: अनंत के माया।

मिथ्यारंजन माया भी कस्ता मिथ्या पसुपर कट कुमान नानुक जब जब जी यार के चरना मिथ्या स्वर्धन कोई रहे मिथ्या रसना पूजन स्वाद मिथ्या मन पर लो लुभा है मिथ्या वास लेर विकारा सबल दे नाम करार नाम ले साज बिना का वो सुचा मुखा होता के दुर्गंध मेघ बिना जो खेती जाए जो कृपण के नाम प्रधान

गुंजन जन भ्राता अपना किया पे माने जगत गुरुनाद गजब जात नेगा सबके जाने आत्म की रहत तांत्र अंतर आजमाए सेवक जिस कृपा करी निम

कृष्णस्वरूप सुप्रसन्नस्तदनात् गुरुप्रसादानुजस्काय देवप्रसाद विकल्पस्माद् देवप्रसाद सुस्ते देवस्ना देवप्रसाद संपूर्ण बलाय देवप्रसाद सुस्ते समावय गुरुप्रसाद नानक मन जापो तिस्त्रव का मूल न मनो विसार

0: ते जाने साध पढ़ाई
1: साध प्रभु बनियाई
0: साध के संग न कबूत आवे
1: साध के संग सराज को पावे
0: साध संग वस्त को चरलाए
1: साध के संग जरसे
0: साध के संग बसे तान ऊंचे
1: साध के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दड़े सब तरम
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के गुरबान
0: साध के संग सब को लुदारे
1: साध संग साजन मीत गुणम निस्तारे

0: साध के संग सर्व दान कम साध के संग नहीं किस काल साध के संग कलु कुतर साध के संग यह हुआ सुविला जो इच्छा सो ही फल पावे पार ब्रह्म साध हृदय बसे साध के संग सुनो हर नाम
1: साध के
0: संग न मंत्र बिसरे
1: साध संग सर्प निस्तरे।

आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा मत बसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल दुखता, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार मा, ब्रह्म ज्ञानी लेता बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सबल मुदा, नानक ब्रह्म ज्ञानी के पैसल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कब से प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी अभुत अगत, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनवाए,

0: ऐसा स्वर तैसी उस माटी,
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान,
1: जो बरता है साई जोगत,
0: नाम को पुरुष किए जीवन मुक्त,
1: बार ब्रह्म के सगले ठाव,
0: जित जित कारा कैसा तैसा तन्ना,
1: आपे कण करावण जोग,
0: रखवाय सोई बनोग,
1: बसरे आप होए नत त्रांग, जैसी मत दे।

गुण कभी सरोते कई गुण को का विचार है नानक हृदय कांत ना पावे कई गुण अंध ज्ञानी कई गुण विघातम निकोर कई गुण पर दुख न करे कई गुण पर देश भरमाए नानक करते की जाने करता रचना कई गुण राजे रस भोगी कई गुण पाथर बिरुक निभाए कई गुण देश भूमंडल कई गुण दे दानवंत से छत्र नानक जिस इस बात इस देश निस्तार है कई गुण वेद प्राण से मत शास्त्र कई गुण नाना प्रकार जंत कई गुण तुकी सरोवर नाम का अपलपत्रय प्रपूर कई कोट नर्क लोग निवासी कई कोट भोजो नहीं फिर कई कोट काला तक पाए कई कोट माया में चिंत नानक सब कुछ ब्रह कर आप

0: लाज कहे प्रभु मुंतारी लावे ध्यान
1: तट तीरथ स्नान
0: प्रभु से साधु मुख ज्ञान
1: कीट हस्त तंग हो जिया
0: अनेक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप जन स्वांगी दिखावे।

0: नानकियम तागे सुपावे
1: तनि मार्ग सम न जावे
2: लस्कर मानुक ऊपर करे
0: आपावी तदा कावे विनाश
2: किन
0: में होए जाए बसमंत
2: करुणाय
0: तस्कर गुवारी सोजन नानक दरगाह परवान संपाय सगले बरतारे नर गुजर पर उतार आदर के को कैसे कवे जब नाई निकट नावे कौन नानक दा की निर्मल सोए
2: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नाई कोए

के दुखों त्रिजों किरमाए, संत के दुखों सब को चले, संत के दुखों नीच नीच आए, नाना संत पाए तापी गर्भाए, संत का निंद किंतु मतलब कोई, संत का निंद परमेश्वर मारा, संत का निंद कुत्ते की अर्दीना, संत का निंद को सराब जोग, नाना संत पाए तास का भी उद्भव को, संत का दुख किसके जगाने में ते, संत के दुख की को सत्या के, संत का दुख की सराब कारी, संत की दुख ना सुखते टरे नान संत पाए तले मिलाए संत का दुखी कथा का न पूछे संत का दुखी उजड़ पाइए जो श्वास मृत की लोता अपन दिन जा पे खाए नान संत पाए तले वार जो जल में मछली तड़फड़ाए जो पाव की तनी त्रपे जो बाढ़ कल के तुम्हारे ना संत का दुख की सदगुण के कहते नान जो तिस पाए सोई तिया संत के दुख की को तरगे में न सजाए संत का दुख की ना मरे ना जी गई है संत का दुख की उचले नरासा जैसा पाए तैसा कोई होए नान जाने सच्चा सोए सदा सदा तिसको नमस्कार तिसे क्या हो साथ सिजास जैसा करे जैसा को पिया

दुख परम पहुँचाए अष्टपति देवन को इतना भगवान बहुत न कृष्णा लग गया है मान कर कृष्णा ही आत इसका नाम रखण प्रवे।

श्री अरविंद हर दर्गन अनुकूल मता सदाचार के गुण गाए चेतन अनकने संसार सदा सदा जानो ते सुखी ऋतुत की ओ सो जी जाने नानक तन रंजन जानिया तिसकी जानो तिस न बुझे सारो रोग ते और जन रात के ग्रस्त में सोई निर्वाण तिसकी कटिया जम की भाषा नानक से न लागे दुख सोसा सोई ला नींद लाए सोसेव को किस ते डराए अपने कारज में आप समाया गुरु प्रसाद तत्स पूजिया नानक जो सुखम सोई स्थूल आपन चलता भी कराए आगा करी तारी सब सिस्टर

नाना चलत करे गिनवाए नाना विध कर बन पढ़ाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ नाम के तारे सगले जानत नाम के तारे समत भेद प्राण नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे पुरया सपन कर कृपा जिस अपने नाय लावे रूप सत जाका सत स्थान पर दूत सत सत जाकी वाणी सत रूप सत कर्म जाकी रचना सत सत करने निर्मल निर्मली सतनाम प्रभु का सुखदाई सत वचन साधु उपदेश सत नृत्य बुझे जे कोई आप सत किया सब सत जिसकी सृष्टि कर जिसकी सृष्टि करने हार करते कि इतना जाने किया विषमन विषम पय विषमाद के रंग राच जन रहे विदाते दुख काटनार जन का सेव सोड़ भागी।

0: रघुने बड़का हुकुम जाने
1: महिमा कौन बकानो
0: इसको गुण का एक न जानो
1: आठ पैर प्रभु से हजूरे
0: नानक जय जन पूरे
1: मन मेरे दिन की ओट
0: ले मन तन अपना दिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पुछाता
0: जन सर्व दुख का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्द सब पाप मिटावे
1: और से अनुप संगी शाड़
0: जन की तो सेवा लाग
1: आवन जाना

वचनी नाम उचरे गुरुकासि गुरुकाते अटै गुरुकासि गुरुबा की नानक सतगुरु से को जी नाल समारे गुरु आज्ञा मन में जाए हर नाम हृदय सत्यावे इसको के कार्य राज इसको प्रभु स्वामी

0: कैसा कुर्बुट बाकी पाई है अशोचन कर्म मलित भाग्यम की तरके कबे मन संतो का तुम पतियाने अमर बिस पे को संत नानक जिस बात इस लय मिलाए सतपुरुष पूर्ण विवेक अगुण गोचर पर निर्वाणी ताकि कीमत की न पाई
1: चार कमल
0: हृदय समरे नानक जिस पर सदा सब प्रभु जपने अमर प्रिय अमर सोए जाके मन पड़े गुम तास सचु दे जीव को दे मन में रख रेक नानक ब्रह्म दूत ते नसे तन पे दुखता के पाई साधु के गुरु उपदेशे सब ज्ञान मंति तन स सा समझ अपना मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गान सुनान कर अज सवना कला का जन सगली मोई अपनी की मता पे पाए सुनंतरे को सोए हे दुर्गा सा के संग

0: संत जनामिल करो विचार अवर पाप समेत विसारो
1: चरण कमल में उतारो
0: कर्ण कांसो प्रभु सम्राट
1: दृढ़ को नाम अरवत
0: केतन संचो हो वो भगवान
1: संत जनों का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माए
1: सर्व रोग नानो पड़ जाए
0: स्तन को चार कुंट टूटता
1: सो तन सेवा ते पावे
0: सुख नित बाचे मी
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: सब बाको करे पली करनी
1: सासु बाप जन की सनी
0: भावी रोग न जाए
1: रोग मिटारा कुतलाए
0: हर निदान में हर नाम निदान
1: जब नानक दर के परवान
0: पर वो दो हर के

नानक मगन प्रसार पूर्ण प्रग्नि डोलाने उपजय जाओ साध के संग अंतर प्रकाशन दिन लाग नानक नाम हृदय सुखोए सरगुर ते निर्मल मत लई सब शिव के नाम सदाने वाले जन्म दुख ब्रह्म गया रवरे ऐसे संग जुरे नानुपति नाम समाए सोको विसर्जे की अजान है सोको विसर्जे जीवन जिया गुरुप्रसाद को भी लालक है जन्म जन्म का टूटा घट है प्रभु अपना नाम जनते आया आंते आज को अरनाम आज को अरनाम जपाओ विपत्ति तनो सिचार गुरु जात पाए विश्राम नानक नाम जपो कुंतास मंतन करे सुहाओ मनुष्य साचन कोई विद्लव को उपावे संग गुरुप्रसाद नाम जप लिया नानक रहा सब समाए पदो संसार कृपाल सर्व प्राकृत पितपाल अर्जुना के प्राण हार पग पाए लाल मनीत नानक तुम ही संपुर भगवान एक नु करके गुण गाए हर के नाम की कथा मन पाई रसना जपती आ रही तो हृदय से पूर्ण गुरु मंत्र।

तवैर्लोकसङ्गमात् तवर्जोकोकसव्याप्त तमुकाकिसोत्परम् नानकर्ण्यानुज तवन्दमोत्कोकिस्कोकनि तवर्जोकोकोनकार तवसिजुकोकटाय तवकोनटर्पणकटर नानकटाकरगमपार तवजनमनकोकाकनासन तवजम की त्रास का कुछ होए तवजित्र को बुद्धि स्तुत लेखा तव कौन चढ़े कौन बंधन बादे नान का कल रूपा भी उत्पर्शा तैवे मेल का क्या तोता तै कौन कमान कौन अपमान तै चल सतर ले तुको किसो तै किसो भूकौन तपता है नानक करते कनाए समारो तब भगवान माय बाप मित्र सुत पाई तब वेद के देव का पूछन तब सगन सगन का विचार है तब कौन रोग कुलपन को ये चीरा नानक अमरी का जानो आप वह किसे व्यापत माया तेवन का नाई प्रवेश तब कौन है तुझे लाग के चिंता तै कौन कदे कौन सुनने आ रहा नानक आपको आपे पहुंचा तेरे में किन विस्तार को नर को सुख पहुंचात अमे मोह पर पैपार अनेक प्रकार की उपतियान के सुख चेतना की कै जे बसे बसा संत प्रताप मुखी जो बाबा उड़नी आप

कृपाते प्राणी छुटे नाम जपत मनो सुख तिसन को न बोचनार नानक दा के कर पूरा दर्शन पे को तू दर्शित सबल दर्शन सुंदर रूप अंतर जाना।

मंत्र की उत्तर जिंद संतियों की दूर मन मंग सारसंग कंस आकर करो नानक गुरु पुरे नमस्कार सारसंग पंच परमानंद गुरु गोविंद मत स्पीवो एक रूप जाके रंग नेक रुपंजन पुन कृपाल नानक जी का एकार अमलीक ला दे रतन आत्र लोक निसार जाके मन लगा रंग संसर नल करे प्रभु काजे नानक पुरे दिन के साथे हर कृपा प्रभाव मिलाए अमृत न

0: विद्वान प्रसाद सो धन दान
1: छाता की पूरन हो
0: प्रधान गुरु पर सो लोए
1: उच पाए स्थान
0: वरना वे आवन जान
1: हाट चले जल सोए
0: नानक से प्राप्त होए
1: शांत रिदनम ने
0: बोध ज्ञान सब तज सो
1: विद्या तप जोग प्रत्याय
0: ज्ञान से तू तुम स्नान
1: सत्य
0: मन सकल देव दास
1: सत्य तत्का वेद सब दसी

आत्मा अदना जात जाकर जन्म मरण बहीन लोक चौदे के बिके जग जापई जे जाप परम रूप नीत मूर्त पूरन पुरख पार कालहीन कला सुजुगत काल पुरख देश अंग रागना रंग जाके जात पात ना नाम आप रूप मीक अनुस्त एक पुरख दूत अंगहीन पंग नातम एक पुरख पार सर्वगंता सर्व

0: कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पास चतर चक्र वास चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परम न पित्रा न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आपे जपे सै के आपे जिलो कह के आदित्य सो कह के राजन प्रभा है के तरमंग तुजा है के जगतंग छत्री है के छत्रन छत्री है।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्त सलाम है, सदैव लकाम है, आदुरूपे अनाद स्वरूप है, त्रिवर्गन त्रिभादे अगंजे अगादे, त्रिभुक्त स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अजय है, अभय है, अभूत है, अधूत है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है।

0: सदा सचिदानंद सतरंग परनासी
1: हरि मूलक निंदा समस्त कुल निवासी
0: जाय बबुते के जाय गनी में
1: करियन करियन करी मूल रहे
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते
1: स्वयं वंश वंश सर्वदा।

0: फूल राजा है बैठा को सिमट पसंद के गैठा
1: रूप से
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख सुन करो तब सरनी पर है दिन के दुष्ट की तो मरे
1: दिन के तुम संग सब तारे
0: जो कल को एक

करियम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुव्रता श्री शिक्षा पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तकाला।

0: मंजनी बसाया,
1: नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया।
0: ए मन मेरिया तू सदा रोहर ना ले,
1: मन मेरी दुख सब सन्ना।
0: अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना,
1: स्वामी स्वामी सुख्यो मन सारे।
0: कहे

0: जंतु बार गनी मन गारे
1: पचपसुन नादम सर्व समय सब को प्रित पारे
0: मुक्त है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे
1: दीनदयाल ध्यान दुखन देखत है पर देत नहारे
0: रहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड पर चांड प्रहारन।

0: पतंग कुरंग पुजंगम भूत पवेक पवान बनाए वेद पुराण कतेब कुरान से तके
1: करहाए
0: आद अनंत अगाध अद्वैक सपूत पवेक पवान अभय है लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभु
1: दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री

0: के निपारो मापत सिद्ध सनातन अंत्यंत्याय
1: ध्यान धरो तह को मन में जय को हम तो सब जग छायो
0: वेद पुराण कथे कुरान पे निर्पाण सबे पचारे
1: भेद न पाए सके अन भेद को खेद तय अन शेद पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग त्यारे।

0: रद अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परंपरा
1: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा
0: गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र जप उद्रा
1: गुरुदेव संगत प्रभु।

पिता हम बारिक तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुम्हारा अंत उचेते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौनि दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यांतर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुत्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वण निशकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा रखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरू धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ओ महाराज आप जी दे हजूर अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवाना विच संगति रूप विच श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ संपूर्ण होए नाम सिमरन अभ्यास होए उपरंत नेतनेम जी कियां बाणियां दी अरदास उपरंत बेअंत गुरबाणी दे शब्द संगति रूप विच सतगुरु जी ओ आप जी दे हजूर जाप अभ्यास कीते गए सतगुरु गुरबाणी पढ़दियां आप जी दे हजूर हाजरी भरदियां सेवावां निभाउंदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शनी
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਰਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ

दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार गनी मन गारे पच पशु नगनाग निराधप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निद दोखन देखत है पर देत ना हारे पुता।

खुबड़ी कोथाए मिठी गलन को मंत्रिया नानक से उबरे जिन्ना पाग मथाहे। सुतड़े सुखी सवन जुरती सहाय अपने प्रेम मिशुहा तनी सठी पहर लवन। सुतड़ी आसंख माया झूठी कारण

भगवंत सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध्यावै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख किरन डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद